हर हर नाम मिले त्रिपतास है मिल संगत गुण गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखा लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गूजरी महला पंजवा काहे रे मन चित भय उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंतो पाए तां कर जिका गय कर तरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ठ हरिया राव जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाई ठाकुर काही मन पौ करिया उडे उड़िया वैसे कोसा तिस बाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सधान ठाकुर करतल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पार हवरिया।

तुम आदि पुरुष परम पुर कर्ता जी तुद जीवड़ वरना कोई तुम जुग जुग एको सदा सदा तुम एको जी तू निचल करता सोई।

तो द्यापी सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सजियार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हम पाई राओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

दौषयते अठव तद्भाता सकलमलेश करुरण खाता जे आस्तवित अवसरणी परे जनके दोष्ट दुखद हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे जनके तम संकट दबटारे जो कल को एक बार त्याए हैं ताके काल निकट न है आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रेष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट धन जाहे निहर हो ताके दाब धनक मोह हरे हो हृद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह स्व सक न कोई एक बार जन तुम्हें संवारा काल फास्ते ताहीं उबारा।

हम अनेक कहे मत एक न माने हूं। सिमरत शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जाने हूं। सरी असपान कृपा तुमरी कार्यो, मैं न कहो सब तो है बखाने दोहरा।

सहजसेती मनवजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों तांगा वो हरि के राम मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो बिसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसे आवा जे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान किया गुरु विटहो जिस दियां ए वड्याइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक दै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते बनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदा बणी महला पंजवा थाल विच दिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारु ए वास्त तजी न जाई नित नित रख वरतारु तम संसार चरण लग धरिए सब नानक ब्रह्म पसारु श्लोक महला पंजवा।

जिन्ने भी गुरु घर ने सारे सिखी दे सोमे ने, इन्हां सोमिया का सोमा है श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब। ओ अमृतसर साहिब की धरती जिहदे बारे महान विद्वान कवि हरिदास कहिंदा है कि यह सचखंड तो बैकुंठ तो भी वड्डी है। किसी ने पुछया, हरिदास यह गल तू किस तरह कह रहा है? कहने लगा, कोई समा सी अकाल पुरख वाहिगुरु ने तराजू दे विच दोवां पलड़ियां दे विच पा के दोवां बैकुंठां नूं तोलिया। कहने लगे, फिर की होया? कहिंदा, होना की सी, ओही कुछ होया जिहड़ा भारा सी उह धरती उत्ते आ गया ते जिहड़ा हल्का सी आकाशां नूं चढ़िया गया। अमृतसर बैकुंठ को तोल्यो हरी हरिदास, गौरव हो तो सो धर रहे हौलो चढ़ियो आकाश। एक विद्वान कहिंदा, सज्जना अमृतसर नूं चलिया ट्रेन ते जा, प्लेन ते जा, जिन्ना मर्जी तेज चलिया जा, पर जदों हरिमंदर

साहब की परिक्रमा भी चलिया जावे उदो कारी ना करी। पता क्यों? क्योंकि जेड़िया सलेटा लगिया हुई ने यह सलेटा ने शहीदां दे सिर लगे हुए ने उस अमृतसर की धरती नूं मोरां वाली दा ढाडी जथा प्रणाम यो कर रहा है।

रण सत्ते जो उड़ने काबा बंदगी समय बबी है लथे सरदूल तेरे जो अमली अमन मसी है रण सत्ते जो उड़ने काबा बंदगी समय बबी है राज ऋषि दियां नजरां सदका जम

जिस आप बुझाए तो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्था।

छोड़े रक्त बंद करने में आम अगन उधर मझा मुख कुचील बिकल नरक घोर गोबार हर

ज्ञान वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमर

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तार में मुझे अडंबर हम क्यों मंज मोहब्बत।

माया नानक आनंद रूप साध संग में मन साई मुखुचराम वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी।

चंग नच भोग रस मिष्टं नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानके दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

छड़ियो हब आपे लगणो चरणा पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रभ पे खंदिया पौड़ी मेल लो दयाले ढह पै द्वारिया रख ले ओ दीन दयाल भरमत बहारिया

संत जना छौ संग पाये वड़े पुन आठ पहर हर ध्याए हर जस नित सुन। श्लोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तने दयाल पुरख भगवाने नानक लिपत न माया भाय बलंदनी बुझ गई रखंदड़ो प्रभाव जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जा पौड़ी जा प्रभ भय दयाले ना व्यापे माया कोट अघा गय नाश हर एक ध्याया निर्मल भय शरीर जन धूरी नाया

भोजन बिखुम असगा गुर बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपा

काट सिलक दुख माया करनी ने आप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे श्लोक।

दयाल पुरख कृपा करे। हिक सेनी हिक समना हर एक सो पे अरदास, नाम अखर धन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी।

रहाओ तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। हम कैयत कल जुग के कामी, इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़े हो, पल पल हर जीते अंतर पारे हो। जत देखो तत दुख की राशि, अजो न पत आए निगम भय साखी। गौतम नाद उमापत स्वामी, शीस धरन सहस भगगामी। इन दूतन खल बल कर मारियो, बड़ो निलाज अज हूँ

सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर पादर हर प्रभ केरा, हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा, हर हृदय मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक पाग चंगेरा। लोग विकार जिना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा, ओए मनमुख मूड़ अज्ञानी कहिए, तिन मस्तक पाग मंदेरा। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक पाग ले।

बाद संतन अवर ना काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर के जासो पाप स्वामी राव ऊंच समाना ठाकुर तेरो अवर ना काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को रात रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी निरपो होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा कुआरी ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी तोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद आयो रे मन दह विस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यों इक मोहत न ए मन लायो बिगस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो तावत को तावे बो पाती जो तेली बल्द परमायो नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तोप्यो न बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो करो बेनती साध संगत हर भगत वचन सुन आयो नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढाया रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया कर अपर

माया, साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। तोड़ी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ। दास कुमारे की पावो दूरा, मस्तक ले ले लावो, महापत से हो पुनीता, हर कीर्तन गुन गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो त्वारो पावो, जो तू दे सही ए तृप्त आन न कथू तावो। सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी, सगल रेण होए रही है, साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभु अपना लही है। सदा सदा हम छोरे तुमरे, तू प्रभु हमरो मीरा, नानक बारक तुम मात पिता, मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम, और कछु मेरे संग न चाले, मिले कृपा गुण गाम रहाओ। राज माल अनेक भोग रस, सगल तरवर की छाम, ताए ताए बहुविध को तावे, सगल निरारत काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो, दीसे सगल बात है काम, कहो नानक संत रेन मांगो, मेरो मन पावे विश्राम। तोड़ी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे, जी प्राण सुख इस मन को, बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी पत है, नाम मेरे परवार है, नाम

श्री रोग मुख उजल मन निर्मल होई है तेरो रहे इहा उहा लोग रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा मने चरावो भोग तोड़ आपत बाद अंकारा मान सोई जो होग संत टहले सोई है लागा जिस मस्तक लिख्या लिखोग कहो नानक एक बिन दूजा हवर न करने जोग तोड़ी महला पंजवा सतगुर आयो।

हार हार पर्यो तो द्वारी लेखा छोड़ अलेखे छूटे हम निर्गुण लेहो बारी सद बख्शिंद सदा मेहरवाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछे पर्यो राख लेहो ए बारी टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निध गायन सांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलाए राव जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहू ते छूटे पव जल जगत करायन खोजत खोजत तक विचारो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण टोडी महला पंजवा निंदक गुर कृपा से हाट्यो पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला सिर के बाण सिर काट्यो रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके सच्चा पंथा फाट्यो खात खर्चत किछ निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ किन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखे लोग सवाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किलविख भरे साध संग भजन कर स्वामी तापन को इक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम न जाही करे जिसका बोहित तिस आरादे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे ओए उहां ही है तरे जोर सकत नानक किछ नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काज कुठार चित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने पाप निवारण हारा दुखंता सुख रास ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला संजवा हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन्ही संभाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अनंद करे हर जप जप

आपन राम न कीनो किनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए बाहु चित लायो सो संचयो जित ऊख तिसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानक को तरया ठोडी महला पंजवा हमारे एक है हरी हरी आन अवर सिंहान न करी रहाओ वड़े पास गुर अपना पायो गुर मोह को हर नाम दृढ़ायो हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याए कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब किस किसके ग्रह में आया टोडी महला पंजवा कर चौथा दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद।

सब देता रिजदास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पोम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन तोड़ी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ स्यान बहु चतुराई देकर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस दे का ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिन से मद टीठे अस्थिर पै साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब टूटे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम सितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुरु बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर

तरमिता पेज शुरू हो गया। नतीजा ये निकलिया कि पखंदरों की भुल तुम्मा जिसम सोए ना वांगू बतात लोग पेख दे पिछे लग तुरे। मैनू धर्म पैदा होने की थावे धर्म की थां एक भरम पैदा हो गया ते भरम कहते ही उसनू ने जो कुछ कोई समझे वह ना हो। गुरु साहब ने बाणी चाकिया कहने लगी

बारिश भी पई पर कहने लगे पता ही सुख किस विच है ते किस विच नहीं, क्यों सुख बाली। कहन लगे दो चीजा इकट्ठिया हो गई हूं तेरी चोन का मसला आ जाना। वो कहन लगे दो चीजा केड़िया ने कि दादर मोर लवंते, दादर ते मोर जेड़े ने वो खुश हो रहे ने, प्रसन्न होके बोल रहे ने। प्रियो प्रियो चवे बंबीहा बोले, प्रियो प्रियो करके बंबीहा भी मिठिया आवाजा नाल अरदासां करके बरस रहे पानी नूं स्वांती बूंद दे रूप विच बीक जाना चाहता है। पर कहन लगे मत समझे कि ए रुत जड़ी ए केवल दादर दी ए, केवल मोर दी ए, केवल चातरक दी बंबीहे दी ए, भलिया ए रुत तां नागां दी भी है, भुजंगमां सप्पां दी भी है। सप भी बारिशां दे दिनां विच निकलदे ने, सावण दीआं बारिशां पै पै जदों खुड्डां विच पानी भर जांदा ते सप भी बाहर निकल आउंदे। बुजुर्ग जानते हैं हम वाले साधन नहीं सन, उदो कच्चे मकान ते कच्चे वेड़े, लोग वेड़िया में सौंदे सन। जो शामा पैनिया सन ना बारिशों के दिनों में, बुजुर्ग आखते सन पुत्र मंजे ते रह, थले ना फिर सप सलूम निकल आता। क्यों? क्योंकि बारिशों के दिनों में जो सावण के महीने दारिशा पैदा ने, उन्होंने बारिशा खुडा पानी चला जाता है, घबरा के सप बाहर निकलते हैं, सप्पा का डेरा भी बहर हो जाता है। जे उ दादर बोलते हैं, जे उ मोर बोलते हैं, जे उ खुशी चातक से बंबी है उड़ीक करते हैं इस पानी की। कहने लगे वह भलिया तेरे लिए खतरा भी पैदा हो गया, हूँ दो पासों सुचेत रहने की लड़ है। भादू जोड़ा है वो तेरे को सुचेत चेतना मंगता है, कित यह ना हो, क्योंकि दो पहा ने उनके तू पछाण नहीं। एक पहा एक रस्ता वह है जोड़ा दादर मोरदा है तो उनकी खुशी देखने का, एक रस्ता वह है जोड़ा सप तो चेतन रहता है। तेरे को पद दो चीजा मंगता है। कहने लगे प्रियो प्रियो चवे बंबीहा बोले, भुजंगम फिरे दसंते, जेडे भुजंगम ने सप ने वो भी इन्होंने दिनों में ही दसते हैं। ख्याल करी जिन्ने नाम के उपासक ने, जिन्ने हिरदे नाम की लालसा करने वाले ने, गुरु भी उन्होंने ही उन्होंने प्रेम भरे हिरदिया ही मिलता है, पर भेखधारी भी उन्होंने उड़ीक करते हैं, जिन्होंने लोड़ हो जोड़ते हैं। आखिर उन्होंने भी उही चाहते हैं जिन्हें नाम की लालसा हो, जाते हैं उन्होंने को, बाबा जी मैनू नाम दो, नाम की लालसा ना होना जाए। लगे जे गुरु के दरबार की संगत उन्होंने दिनों में जुड़ती है तो ख्याल करिए भेखधारियों के दुआले परिक्रमा भी उन्होंने लोगों की होंगी है जेडे धर्म की लालसा रखते हैं। पासू का नहीं है प्रियो प्रियो चले बंबीहा बोले भी है, भुजंगम फिरे दसंते भी है। कह लगे मेरे भुजंगम नहीं बल्कि मच्छर डंग सायर भर सुभर, जिथे पानी के तलाव भरे हुए ने ना, सावन की देन है, उस रुत की देन है, उत्थे मच्छर भी पैदा हो गया। हालात यह ने, अंदर सौवो तो गर्मी लगती है, बाहर सौवो तो मच्छर लड़ता है, ये दोनों चीजा भी इसे भादों की देन दे। कह लगे ये भादों ऐसा है जिसका ना ही दो पहा है, एक पासे हौ खलोती है, एक पासे हरी खलोता है। हम दोहां विचों तो देखना, एक पासे भरे हुए तालाब पानी देने, जल थल नीर भरे ने, एक पासे मच्छर है, उसे सुख भी है दुख भी है, उसे भरम भी है उसे धर्म भी है, उसे असल भी है उसे नकल भी है। इसलिए भलिया मैं चाहना सावन तो बाद भादों विच किते अपना सुख गुआ ना बहे, इसलिए चेतन रहे। चेतन किवें रहे? एक अरदास करें,

से भादो नरक न पाए नहीं ता सावन आउन तो बाद भी तपों राज बनदा है ते राज्यों नरक भी बन सकदा है जे उसे ही नाम दे सहारे उसे ही मालां दे सहारे एक पखंडमई पेखतारी जीवन नाल जुड़ जाएगा ओ पेख दे अधीन कीती होई पालना नरक भी बन जाएगी अनेक घर बर्बाद हुंदे देखे ने पेखतारियां दे मगर लग के जीवन बर्बाद हुंदे तक्के ने हालांकि वो जानदे किसे नाम सिमरन दे प्यार नहीं ने पर मैं तो ऐसी चीज़ ना जेड़े लोग अपने हृदय में ऐना विश्वास रखते ने ते ऐनी जीवंदी जमीर वाले हुंदे ने कि एक पास से अपनी ती वाल कोई मैली निगाह करके भी देख के बर्दाश्त नहीं करते वो भी लोग ने पर वो भी सन जेड़े अपनिया तिया नू अपनिया बच्चिया नू जोबन विच देवदासियां बना के मंदिरों में चढ़ा आते सन वो भी तो धर्मी सन उन्हें कोई पूछे क्यों पे कर दे एक क्यों कर रहे हो पर वो क्योंकि भयंगम फिर संत आ गए सन ब्राह्मणिज्म दे उस डंग नाल भेखधारी धर्म की नकल डंग दे दसिया होया ने यह पछाण भी ना सके ये जान भी ना सके कि यह धर्म नहीं है तो परम है धर्म तो बच्चिया की परिवार की इज्जत से जमीर मंगता है परम कभी बेजमीर नहीं होन दिता धर्म पर होया धर्म के नाम थले ऐसे भरम के जाल में फसा के धर्म के नाम थले जीवन बर्बाद होंदे गए तो सदियों तो हो रहे हैं अज बदलवे रूप में अज भी हो रहे हैं गुरु कहिंदे ने मैनूं एवें दिसदा मानो बारिश ते जरूर पई होवे सावन तां जरूर आया होवे पर उस बारिश दे नाल ही हों खड़ी हो गई होवे तपत अगे नालों भी खतरनाक पैदा हो गई जिहड़ी भादों की तपत है ना वो हाड़ की तपत नालों ज्यादा खतरनाक होंदी है कहन लगे उनका तरीका एक ही है कि तेरी मालक नाल बन आवे नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत कहन लगे फिर विश्वास कर

माया पदार्थां दे विच स्वार्थां च जीवन फसिया पे है, हौमे हंकार विच फसे पए है। सुख दे साधन सारे है पर गुरु नूं बिदावा, साडा बिदावा कौन पड़वाएगा। अज सानू बिदावे पड़वाउण दी लोड़ है, अज गुरु के सिखो बिदावे पड़वा लईए, टुटियां गणा लईए। अज केवल इतिहास पढ़न सुन तक सीमित न रह जाइए। अज देखो सतगुर सच्चे पातशाह ने इन्ने दुखां दे समें च वी उस परमेश्वर की बंदगी, अज असी गुरमुख प्यारे इतिहास पढ़ते हैं। जदों आनंदपुर साहब नूं छड्डिया सतगुर सच्चे पातशाह ने, सवेर वेले अमृत वेला होया ते सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे भाई दया सिंह जी, इस वेले आपां आनंदपुर साहब की करदे हुंदे सां? ते जवाब मिलिया सच्चे पातशाह आसा जी दी वार दा समां, इस वेले गुरु के दरबार च आसा दी वार दा कीर्तन। ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने वचन कीता, संगो सज जाओ फिर ला लो पलाठियां ते आसा दी वार दा जाप होवे। आख्या सच्चे पातशाह मुगल फौजां मगर लगियां ने, बाई धार दे पहाड़ी राजे ओह भी दुश्मनी ते खड़े ने उन्हां दीआं फौजां, ते 10 लख ख्वाजा खान की अगवाई के अंदर फौजां जिहड़ियां दिल्ली तो चढ़ के आईआं ने मुगल फौजां। सच्चे पातशाह महाराज जंग युद्ध का समा 400 फेरे घेरे पए आ। नीति नहीं कहती कि आप इतने पदरे बैठ जाइए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या, सिंघो अमृत वेला, इस वेले आसा की वार का समा सज जाओ, आसा की वार का जाप होवेगा। पर महाराज आसा की वार ने कीर्तन लई साज चाहिए, तानपुरे सरंदे रबाबा तबले वो सारा कुछ जो सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब रह गया। ना तो अज तानपुरे कोल आ, ना सरंदे कोल आ, ना रबाबा कोल आ, ना तबले कोल आ। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज, मेरे बाजा वाले माही 400 फेरे फौजा के घेरे, मुगल फौजा और मुगल बादशाह रंग दे जो कुरान ते कसम खा के दस्तखत करके कसम खा के मुकर चुके आ, उदिया फौजा 400 फेरे। पर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे नहीं सिंघो, कीर्तन होवेगा, साज नहीं है। आख्या जिहो जिहा समा उहो जे साज। अज खंडे ने कोल, तेगा ने कोल, ढालां ने कोल। सच्चे पातशाह कहिंदे सिंघो अज ढालां दे तबले बना लो, अज खंडियां दे तानपुरे बना लो, अज तेगियां दीआं रबाबा बना लो, आसा दी वार दा जाप होवेगा। इतिहास कहिंदा सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने उन्हां जंगी शस्त्रां दे नाल आसा दी वार दा जाप कीता अमृत वेले। सतगुरु ने इन्ने दुखां दे समय में गुरबाणी का राह नहीं छड्डिया, साडे लई मार्गदर्शन किया कि सिखा दुख होवे सुख होवे तू गुरबाणी नाल जुड़े रहना, समर्पित रहना सतगुरु नूं। 400 फेरे मुगल फौजा पर सतगुरु सच्चे पातशाह बाणी नाल जुड़े, वाहगुरु के भाणे नाल जुड़े आ। इन्हां दिनां वल निगाह मारी आ, पोह दे दिन जे सरसा दे कंढे ते परिवार विछोड़ा होया, निगाह मारी उस समय वल गुरमुख प्यारे किसे विद्वान ने लिखिया, सरसा नदी ते बीतिया इउं भाणा, सिंह सिंघां तो बेस मार विछड़े, दसम पिता तो विछड़ गई मां गुजरी, साया सिंह विछड़े सेवादार विछड़े, जोरावर ते लाडले फतेह सिंह तो वड्डे वीर अजीत जुझार विछड़े, मना मूही ग्रंथ ते लखा मोहरा करके नदी दी भेटा दा तार विछड़े। ऐ पर आख्या गुरु गोबिंद सिंह ने, मेरा सारे दा सारा परिवार विछड़े, पर रखिया गऊ गरीब दे करन वाली, मेरे हथों ना मेरी तलवार विछड़े। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, परिवार विछोड़ा सरसा ते होया, जिथे तुरकां छेड़ लई जंग रात वेले, तोड़ा किसे पासे मोड़ा किसे पासे, सतगुर सिंघां दा दल नखेड़ दिता थोड़ा किसे पासे थोड़ा किसे पासे, पर साबर सोने सुनखियां बच्चियां दा जोड़ा किसे पासे जोड़ा किसे पासे, पर फिर भी वाहगुरु दे रंगां विच राजी परिवार विछड़िया, साहब जादे विछड़े माता विछड़े, पर सिखी दा राह गुरबाणी दा राह गुरमत दा राह नहीं छड्डिया। अत दुखां दे समें जे चमकौर दे मैदान दे अंदर देखो गुरमुख प्यारिओ, जे मुगल फौजां ने घेरा पाया, साहब जादे जंग दे मैदान विच जाके जूझ रहे जाना तो प्यारे सिंह जंग दे मैदान विच जूझ रहे आ, अखां दे सामने
ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कह रहे हैं कि मैं अखां दे सामने तुहानू बरसी खांदे हुए देखना, जो छाती च बरसी वधेगी छाती

अवगुण परम गुरु सुख सागर दर्तन वारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलाद को आत्म रस जन जाने काव काल सुजा

है कोट पराधी दरियार गुरु नानक जन सुनया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारे तुर की वाणी आई जन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हरना।

ते फिर गर्भासु न परियारे कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सक महिमा जो तिहारी हवना

दर्शन प्यासी दिन सरात केतवो अनजन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ देखा बिकसाई माया मोह परम पैपे सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मठाई।

मनमुख कर्म कमावणे हो मैं अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा। सहजे जागै सहजे सोवै गुरमुख अन्न दिन औसत होवै। मनमुख भरमै सहसा होवै अंतर चिंता नींद न सोवै। ज्ञानी जाग सब सुपाई नानक नाम रत्या अंबल जाओ। पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या। हर एक त्याव है एक इको हर सत्या। हर इको वरत एक इको उत्पत्या। जो हर नाम त्याव है तिन डर साढ़।

जय कुमार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम घोर असंख अमर कर जाय जोर असंख गड़बड़ हत्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाय असंख कूड़े आर कूड़े फिराही।

गाय गाखण पाए हो जाने जितियां मोह खाए आपे जाने आप दे आखे सिप कई कई जिसनों बख्शे शब्द सालार नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण मुल व्यापार मुल व्यापारी अमुल भंडार अमुला वह मुल ल जाहे मुल पाई मुला समाए अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल मुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान।

विद पाठ पुराण आख पढ़े करे बख्याण आख ब्रह्म आख अंध आख गोपी दह गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख गीते गीते बुद्ध आख दानवे आख देव आख सुर नर मुंजन सेव।

दरबार तिथ सोहन पंच परवान नदरी करम पवन निशान गज बगाई उथ पाई नानक गया जप जाय धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म गेते पवन पाणी वसंतर गेते कान महेश गेते वर्म कारत कड़ी है रूप।

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथ नाद विनोद गोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथ काढ़ कड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहि जी को कहे पिछे पछताई तिथ कड़ी सुरत मत मन बुद्ध तिथ कड़ी सुरस दंग की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथ होर ना कोई होर तिथ जुद मां बल सूर तिन में राम रहे भरपूर तिथ सीतो सीता मैं माही ताग रूप न कथने जाई ना वो मरे न ठगे जाई जिनके राम मस मन माही तिथ भगत वसें के लोह करे आनंद सचा मन सोई सच खंड वसें निरंकार कर कर भी कह निहाल तिथ खंड मंडल वर भंड जी गो कथा तंत न अंत तिथ लो लो आकार जिव जो हुक्म दिव तिवकार।

योगे नमः बहुभोगे नमः सर्वदयाले नमः सर्वपाले चाचरी शांत प्रसाद रूप है नूप है जुह पूह लेखा पेखा नाम है काम है अधेह अपेह जीता पीत धर्मान दान त्रिवर्ग सर्गया नील अनाद जय जाद जन्म वर्ण पूत वर्ण गांजा पांजा चूजा चांजा मी कर फीका तंद बंद अकाल है निर्भूज है सूज है अकाल है जाल है अल्लाह है जाय अनंत है महंत है अली का इंद्र श्री का इंद्र लंब है सांब है गम है जम है भूत है जूत है अलोक है अशोक है अकर्म है परम है जीत है पीत है अभय गाय मानन दान नी गय प्रेय गय उपजंग प्रयात शंभ नमो सर्वमान्य समाति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे न अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो बन पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो बन पाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो बन पाने नमो बद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे ब्रह्मंगी परमाथे समाधि प्रभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम हृदय नमो परम ज्ञात नमो नमो राज राजेश्वरंग नमो परम हृदय नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अभिखीय भरमीय भोगीय भुगते नमो योग योगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो शाशाग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संघाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे रूपे समाज कल्याणवासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध करता अदो उर्दरदंग गंगो हरता परंग परम परमेश्वरंग पुरुष पालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो ब्राजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी शंभ जले हैं थले हैं पिता वे है प्रभु आजूंगा देश भेष है भुजंग प्रयात शंभ अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समासी नदाने नमो देवदे नमास्तवंग नरनाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग गंजे नमास्तवंग पंजे नमास्तवंग काले नमास्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा शाहे नमो महा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रुख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वजरोगं नमो सर्वभोगं नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं

नमो नर्कनाशे सदैव प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अपंगं प्रभूते परमात्म परमात्मे सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्ग निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाता न माता न जाता न पाता नरसाग श्रीगा मित्र ही गाय सदैव प्रवाह जय जाय भागवती शंभ तब प्रसाद कि जहर जूर है कि हाज रह जूर है हमेशा सलाम है समाज सल कलाम है कि साहब दिमाग है कि उस जरा गए के कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दहद है कि राज करहद है गरीमल कमाल है कि उस जमाल है गरीमल कराज है गरीबल नवाज है हरिफल कन है रास लिप कन है कलंकं प्रणास है समाज तुल निवास है गंजलो गनीम है रजाय करीम है समाज तुल जुवा है कि साहब गिरा है कि नरकं प्रणास है बैस तुल निवास है कि सर्वलगवान है मे सुदरवान है तमामुल तमीज है समाज तुल अजीज है परम परमीश है समाज तुल अदीस है आदेश लो लेख है मेस लो पेख है जमीन जमा है मी गल माँ है गरीमल कमाल है गजरो जमाल है गजलंग प्रकाश है कि मैं दुस्वास है कि आज विसरूप है कि मैं तो भूत है कि मैं तो बसा है कि आत्म प्रवाह है कि जलंग नांग है कि मैं तो पांग है मत बार शांत तब प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम हर भरिया गांज हर नर पर पांज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नरिया खांडू भर नरिया मंड अन पवन आश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल धन मदाम अंश जे अंग आसन पांग रूप मापार गात्मे दुदार जल थल मांडो देश वैसा पांडो जल थल महांत देश वैसवे अंत अन पवन आश त्रैत धर तुराश राजन बाही कैसा ओंकार याद कदन कदनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम जरन नाम अंश जगात अज जिन्ना बात अन चंज गात अनरंज बात आन टुट भंडार अन थट अपार अठ धर्म अत डीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तव प्रसाद करुणालया है अरकालया है खलखंडन है मैं मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है दृत के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्या है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड सह खलखंड सह परते पर है करुणा कर है जप जप सप सप है कृता कृता मृत मृत मृत मृत करुणा कृत है कृता कृता धरण

अकृतामृतामृताय जपाकृतामृतामृताय नरनायिकाय कलकायिकाय विश्वम्भराय करुणालयाय नृपनायिकाय सर्वपायिकाय पाप पंजन है और गंजन है रिपदापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर्ता हरता हर है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म वास है जस के जस है भुजंग प्रयाद शंभ नमो सूर सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह ताम सिंह शांत रूपे नमो परम दत्तन दत्तन स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नारिंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो भांग भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगीय नामे दृभंगी दृ काले अनंगीय कामे एक अचरी शंब अजय अलय भय भय भुवजु अनास काश अगंज पंज लख पख अकाल दयाल लेख बेख नाम काम घाट अनाथे ब्रह्माथे योनि मोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात शंब नमाज तुल परनामे समाज तुल प्रणाशे अगंजलो नामे समाज तुल निवासे नृगामंग बभूते समाज तुल स्वरूपे गोगर्मंग प्रणाशे सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणाशी ग्रीमन गुनिंदा समाज तुल निवासी अजायब बपूते जायब गरीम मैं हरियम करियम करीम रहीम मैं जदर जकर भारती जदर जकर बहुते सुयम पव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूप सदांग संघ अभंग अंग बभूते जदर जकर भारती जदर जकर बहुते सुयम पव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूप सदांग संघ अभंग अंग बभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ तव प्रसाद सवैये एको ओंकार सतगुरु प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख प्रयोग कर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा दे संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत कौ न देखित प्राण पति के सरि भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बने एक रति के माध्यम दंग जरियर संग अनूप दंग सुरंग सवारी कोट दरंग रंग से गुलत पौन के गौन को जात नवारी बारी पजान के भू पली विद न्याव शीसना जात विचारे एते पए तो कहें पय भूपत अंत को नहंगे पाए पगारी जीत फिर सब देश दुसान को बाज ढोल मृदंग नंगारी गुंजत गुड़ गुजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारी भूत भविख भगवान के भूपत कौन गण नहीं जात विचारी सरी पद सरी भगवान भजे बैन अंत को अंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दयादम दान सुसंजम ने मन एक वसेख है वेद पुराण देव पुराण जमीन जवान सुवान के पेख है पौन आहार जति जलदार सब सब चार हजार के देख सरी भगवान भजे बैन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुबादुर अंत दवाह सुशासना दृजान दलेंगे पारी गुमान पर मन मैं कारु पर्वत पंख हले नहलेंगे थोर हरीन मरोर वासन माते नंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बैनो त्याग जहां नदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचारे सार की धार बछैया तोर तदेश मलंद मवासन माते जान के मान मलैया गड़ गड़ान को तोड़ नहार सुबात नी जग चार रवैया साहिब सरी सब को सरनायक जाज कनेक सुख दवैया दानव देव वरंदन साचर भूत भयक भगवान जपेंगे जीव जुक्त सब में थल में पाल ही पल में सब साफ सपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धोन बापन के बहु पंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फिराए जग सदर सवैब लोग जपेंगे मान वेंद्र गजेंद्र नाथ बजोंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गिरधिक धान अनेक स्वयंवर साज भरायेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सजी पद अंत पदेशम पाद भरायेंगे जे नार श्री पद के परस भाग दे नर फिर न दे तरेंगे कहाँ पै जो दो लोचन मूंद के बैठ जो ध्यान लगायो नाथ बरेली असार समुद्रन
लोक गयो पर लोक आयो बास की उपस्यान से बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो साज कहो सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो काहू ले पान पूछ धरे सिर काहू ले लिंग करे टकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीस नवायो को बदान को पूजता है पास को मृतान को पूजन तायो गुर करया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो को बदान को पूजता है पास को मृतान को पूजन तायो गुर करया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो पातशाही दसवें कव्यो वाच बेनती चौपई हमरी करो हृदय रक्षा पूर्ण हो इज्जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना ध्यान करो प्रतपारा हमरे दोष्ट सब तुम काव हो आप हृदय मोहे बचाव हो सुखी वसै मोरु परिवार सेवक सेख सब करतारा मोर रक्षा निज कर दे करे सब बैरन कवाज संगरे पूर्ण हो हमारी आशा दूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ जो अवर जाऊ सदम ते पाऊ सेवक सेख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे है मरण काल का त्रास न भरे है हु जो सदा हमारे बचा सरिया सो जू करे और अच्छा।

काल जो किसो कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताहीं हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को बल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्ठी ते गुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख बाहि ते दुखी सुख बाहि साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के बट बट की जान जब उद करख करा कर तारा पर जरत तब दे अपार जब य करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद हर आलम।

महामूढ़ का भेद न जानत, महादेव का कहत सदा सेव, निरंकार का चिंतन है पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, मरणत पैन पैन तो वह तेती, तुम्हारा लखन जाय पसारा, के विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव गई भूपा, अंडज जीरज असिध जगीनी, उत्पुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा है वह बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाई जम्पव, आदि जुगाद स्वरूप से जम्पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संग्रो, दोषी ते उठ।

बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजी अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ठाकुर तुम तहरदास जियो पिंड संकीरी लाओ ਸਿਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਸਮਗਰੀ ਨਾ

गुरु रामदास अमता मुनवरा जहां बने अकेले सिद्ध हो सपा हम हर सल्तनत हमसे

0: अनक जन्म दीप्ति अन फरमाई, अनक जन्म दीप्ति अन फरमाई, कर वासना के दुष्ट माई।
1: जिन रैन अब

नानक से जागन नानक से जागन जे रखना नाम उचारे गुरु कृपा से जन जागे गुरु कृपा से जन जागे जिना हर मन बसया बोल है अमृत।

परवार पार के तानिया, परवार पार के तानिया, लिख ले आप पता मुझे जम जम जंगल लग गई।

0: हर हर नाम निशान है,
1: गुरुमुख पाया
0: तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो
0: हर हर नाम निशान है।

0: के माता ने नित जपे हर नाम हर नाम बदला
1: लोक मल्ला दूजा एने आती जग जा

लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रभाण लख सब परदेसां सहजो विवान लख सूरत सुराम रण मैं टुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान जन पढ़िए पढ़ प्राण जिन करता करना किया।

0: बलिहारी को प्रसाद निराप समान जाए लेके आ रहा हूँ। जहाँ से मैं जोत जोत में जाता तो कला पर पूरिया तू तो सच्चा सच से स्वालु जन कीती सो पार किया। कौन आने काटे गया बाता जो कुछ करना तो कर यार मल्ला धुंधा।
1: जो शब्दन ज्ञान शब्दन बे शब्दन ब्रह्मना खत्री शब्दन सूर्य

राम कहे सितम्बर स्वामी सच में ऐसे सच रहे सब कुछ सच मावेरे कह रहे भरपूर ऋग कह रहे भरपूर राम नाम देवा वसूर नाय रहे प्रास जाए नानक तो मुखंत्र पाए जुज में जोर चली चंद्रावल जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जान भया पार जात गोपी लाया वृंदावन में रंग किया कल में वेद सर्पण हुआ नाम खदा लिया खदाई न भया नील वस्त्र ले कपड़े पहने।

0: ब्रह्म को करला वो गोबर तर न जाई, धोती टीका ते जप माली तान मलेचा खाई, अंतर पूजा पड़ी का संजम कर का पाई, छोटी दे पा ठंडा नाम लिए जाए तरंदा मरला पहला।
1: मान सिखाणी करे निवास श्री भगवान तन गलताल, जिनकर ब्राह्मण पूरे नारो न व्यारे हुई साज, कूड़ी राग कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार, शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर, मथे टिक्का देर धोती का खाई हाथ श्री जग कसाई, नील वस्त्र पैर हुए प्रवान ले साले पूजे प्राण, अब आख्या का कुठा बकरा खाना जो उनके ऊपर जो किसी न जाना, देख जो का कड्डी कार ऊपर बैठे कूड़े यार, मत पिटा वे मत पिटा।

एक नी दो संभाली एक चुले रैन चढ़े एक निहाली पैसों ने कुपर रैन खड़े तिना तुम्हारे नानका जिनको नजर करे मोहल्ला दूजा।

परम सम्मान योग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा सदका आपां हफ्तावारी समागम दे विच हाजरियां भर रहे हां। पिछले दिनां दे विच गुरु घर दे प्रेम भावना वाले गुरसिख जिन्हां ने गुरद्वारा साहब की उसारी वेले बहुत वड्डी सेवा की, सेवादार बन के हथी सेवा की, तन मन धन दे नाल सेवा की, सत्कारयोग भाई सुरिंदर सिंह जी धूत, सतगुरु जी के हुक्म विच संसार दे विच आए, हुक्म विच यात्रा की, पातशाह जी का हुक्म आया, पिछले दिनों के अकाल चलाना कर गए सन। सो उन्हां दी आत्मा की शांति वास्ते समूह परिवार वालों सत्कारयोग माता जी सुरिंदर कौर जी, सत्कारयोग भाई कुलवीर सिंह जी धूत, भाई हरप्रीत सिंह जी धूत परिवार, बीबी मनदीप कौर नरंग समूह परिवार वालों श्री सहज पाठ प्रारंभ करवाए गए सन। अमृतमयी बाणी का पाठ संपूर्ण हो चुका है। सो अज भोग पैना है तो अंतम अरदास होनी है। आओ अमृतमयी बाणी के नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राग सोरठ की वार

मनमुख कर्म कमावणे होमय अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवणा नानक शब्द विचार महला तीजा। सहजे जाग सहजे सोवै गुरमुख आन दिन औसत होवै मनमुख भरम सहसा होवै अंतर चिंता नींद ना सोवै ज्ञानी जागहें सबहें सुपाई

हर एक त्याग एक इको हर सत्या हर इको वर्त एक इको तपत्या जो हर नाम त्याव है तिन डर सट कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया।

अथ तान तान जी तो कह दियो दास नेह न कीन कहो नानक नर बाबरे अब क्यों डोलत दीन। तन धन संपै सुख दियो अर्जह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहि न राम। सब सुखदाता राम है दूसर नाह न कोई कहो नानक सुन रे मना तेह सिमरत गत होए। जेह सिमरत गत पाई है तेह बजरे तमीत कहो नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। पांच तात को तन रचियो जानो चतरस जान जह तह उपजो नानका लीन ताहि मैं मान। घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक तेह बज मना पौने दे उतरे पार। सुख दुख जे परसै नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाहीं जे कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तै जान। हरख सोग जाकै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तै जान। पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। जेह

कहो नानक सुन रे मन ते कट ब्रह्म निवास जे प्राणी हो मैं ती करता राम पछान कहो नानक ब मुक्त नर एह मन साची मान पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भज सफल होए ते काम जे बा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परे न जम कै धाम।

नानक बिन भगवान निसदन माया कारने प्राणी डोलत नीत कोटन मैं नानक कहू नारायण जय चीत जैसे

माया कारण तावही मूर्ख लोग ज्ञान कहो नानक बिन हर भजन वृथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फस रहियो विसरियो गोविंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम।

जन्म जन्म पर मत फिर मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भजवना निरपय पावे वास जतन बहुत मैं कर रही हो मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदेओ राख लियो भगवान बाल जवानी अर बिरद फोन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बेन बिरथा सब ही मान करणो तो सो ना कियो परियो लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोबत अंद मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिं नमीत नानक मूर्त जिदर ज्यों छाड़त नाहिं नपीत नर चाहत कछ और की और पई चितवत रहे उठ गौर नानक भासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोई कहो नानक सुनरी मनाऊ हर भाव सोए जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरते पूर्ण हो वह काम

गर्भ करतह देह कौ दिन सहन महमीत। जेह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह घट सिमरन राम कौ सो नर मुगता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहीं मान। जैसे

तीर्थ वरत अरदान कर मन में तरे गुमान नानक निह बल जात दे ज्यों कुं चरे स्नान सिर कंप्यो पग डग मगी नैन जोत देहीन कहो नानक हे बिपत बिद भई तउ न हर रस लीन निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाही नानक सिर हर भगत है तेहरा को मन माही जग रचना स

बाल हुआ बंधन छुटे सब किस हो त्यो पाए नानक सब किस तुम रह हाथ में तुम ही हो तसहाय संग सभा संग सखा सब तज गए कौरन बिहो साथ कहो नानक हे बिपत मैं टेक एक रघुनाथ नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद कहो नानक हे जगत मैं किन जब

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच राग नि संग उच रही।

पात्र द्वितीय माल कौशक आला पै संग रागनी पंचौथा पै गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी होती उचारी तनासरी पंचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में बारा प्रबल चंड कौशक बारा खौ खट्यो भौरानंद गाई अष्ट माल कौशक संग लाई

सुरमानंद भास कर आई, चंद्र बिंब मंगल सुहाई, सरस बान आवाही बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा। आष्ट पुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दिपक की वारी,

दियो फैज रखो जन हर जन केरी हर देह नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल ने खंजनो सतगुर की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कहे सबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद आनंदन वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परिवार मेरा मान वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाना फिर नाही गुर जाई हर प्रभा जियो सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल न पाया मित बैज मित बिगसै जिस मित की बैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु प्रदख होंदे बैराज आप टकाया सब सिख बंध पुत भाई रामदास बैरी पाया अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सदेहो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाग बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सजान जियो रामदास सोडी दलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास बैरी पाए जियो सब पवै बैरी सतगुरु कैरी जिथे गुर आप रखिया कोई कर बखीली नवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणे आईयां शब्दों तां गावो हरी तेरा मन जिनी बसाया।

दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सोच मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रह, साच नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पजाइया। सदा कुरबान किया गुरु बिटो जिस दिया ही वडियाइया। कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द जित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कवारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तैं सुख आदित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो

संत साजन पय सरसे पूरे गुर ते जानी सुन ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे।

मात गर्भ मह अपन सिमरन दे तुम रखन हारे। पावक सागर सह लहर मह तार तारन हारे। मात गर्भ मह अपन सिमरन दे तुम रखन हारे। पावक सागर सह लहर मह तार तारन हारे। माधव तू ठाकुर सिर मोरा।

0: बोले सो निहाल श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर एक बारी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा इन्हों इसी तरह सेवा में चलाई रखे। हुण डेग पताई जाएगी अते परिवार वालों लंगर तैयार है, गुरु का लंगर छक के जाना जी। अगले हफ्ते इसी तरह आसा की वार दे नाल कीर्तन आरंभ होणगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸਤਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

रात रब नहीं पलाउना चाहिदा, नहीं पलाउना चाहिदा। दिने रात रब नहीं पलाउना चाहिदा, अठे पैर हार जस गाउना चाहिदा, अठे पैर हार जस

0: समरथ वर्ण न सकोता की उपमा जात ना कहोरी।
1: एक बार ख्याल पड़ गया सर, हैरान हो गया सर। भाई गुरुदास ने भक्तों का जिक्र कर दिया कर दिया। जदों राजा जनक की वारी आई, राजा जनक की वारी आई, उसके नाम नाल एक शब्द वाधू लाया, कहन लगे

किसी ने कुछ छड़ दिता है, उनके कोल ही नहीं, हुण उनकी वरतों की करनी। गुरु कहते तेरे कोल कुछ होवे फिर तेरी पकड़ ना हो। जिहड़ा असीं कई बार हर गल नूं भरम विच लै जाने हां कि सिख ने सोना नहीं पाउणा, आम दृष्टि जीवन विच वी गल्लां चलियां होईआं, आम शंके बन गए। कई बार बीबियां सवाल भी करदियां ने कि जी की सिख लई गहना पाउणा सोना पाउणा मना, एक ख्याल करे गुरु घर अंदर केवल सोने नाल मन का लगाओ ना हो, त्याग असल में मन के लगाओ है। त्याग में हर एक चीज आउंदी है, पकड़ में भी हर एक चीज आउंदी है, माया का भी त्याग मन के लगाओ है। जिहड़ा आपां आखने ना माया का त्याग, वो भी मन की पकड़ जिहड़ी है उहदे तों बाहर निकल रहा है। विच गुरु ने बाणी अंदर ही एक थां ते फरमा दिता है, कहिंदे जे किसे घर विच दौलत माया ना होवे उत्थों दी हालत की हुंदी है। कहिण लगे आवत पईआ खुद जाही, जे उस घर विच कोई रह जांदा मुसाफिर आ जाए तो उस घर विचों भुखा ही जांदा, क्योंकि उहदे अपने घर विच कुछ है नहीं, जिवें भुखा आउंदा तुर जांदा। एक ख्याल करो आ जो लंगर पकते ने बिना माया तो नहीं बन पकते, जेडे गुरुद्वारे बनते ने बिना माया तो नहीं बनते, जेडे सोने के कलश चढ़ते ने बिना दौलत तो नहीं चढ़ते। फिर जे सचमुच यह है तो फिर माया का त्याग की हो। एक पासे गुरु आख रहे हैं

0: हो तिन संग झगरत पाप।
1: सारंग राज में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के शब्द पढ़ लो,
0: कहने हो पुत्र जिसने तेन जन्म दिता है, जिसने अपने तो पहला तेन खोया, जिन्हें अपने मुंह चो गुरकी कड़ के तेरे मुंह विच पाई, उनके नाल चकड़ना हाँ मैं तेन धर्म सिखाव। दुष्टि के घरों धर्म किने मिलता है, यह चीजा तो धर्म ने कुर्बानी है ना, धर्म धर्म की दुनिया स्नेह है ना, धर्म की दुनिया में समर्पण है ना। आप इन्हें दिन अठ दिन सब दिन इतनी कीर्तन किया है, उनके धर्म दलों कीतियां यही गल् आई हैं। धर्म की दुनिया सेवा है ना, वो मामल की सेवा करके दुनिया का कोई भगत विखा दे, इस सकूल में सेवा मिल रही है। एडी अजीब गल है कि अपना आप कुर्बान करके मौत के दरवाजे लंघ के मां तेन जन्म दे रही है, इस तो वड्डी कुर्बानी की हो सकती है। कुर्बानी में तू धर्म का चिन्ह बना लिया, किताबों में लिख रहा है, पर रोज तू अखी देखना है मां की कुर्बानी, पर तू इस गृहस्थ आश्रम गृहस्थ के धर्म विच उस कुर्बानी की तेरे मन में कोई वैल्यू नहीं। मौत के दरवाजे लंघती है, तेन जन्म दिंदी है, अपनी जान, अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, अपनी जवानी घोल घोल के दुध के राही तेरे तेन जवान करने लिए पिलाती है, कि तू उसकी कुर्बानी नहीं समझ पा। वो लोग की जानन

उसमें जज्बा किसी से ठीक तरह पूरा न कर सकता, इनको सुझा भी न दे सकता।

这么普遍，那叫呢？这个是绝对是一个传统，你让我不能变。तो हर पीकल करना चाहना ग्रस्त कर्म है। इसको सही मायने में अपनाना, एक दूजे लिए जीना कुर्बानी है। बच्चियां नु मौत ममता नाल पालना कोई गुनाह नहीं, तो सेवा है। बच्चियां दा मां बाप लई मान सम्मान करना, सत्कार करना, तो पलिया। जे तू मां बाप ने मत्था नहीं टेक सकिया, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब मत्था भी टेक सकता। पर देखिए एक कारण है, साडे कल्चर नाल टुटे हुए बच्चे घर विच कई बार जाइदे ने ते मां बाप दिलकदे ने कहिंदे फतेह बुला, और क्योंकि वो सुभा नहीं रहे, इस गैर कल्चर पल रहे, उन्हें किसी बजुर्ग नूं फतेह बुलाने भी औखी हो जाती। गुरु ने आख्या दर्दी बन वाले आ, मैं तेन ग्रस्त मत्था टेकना आराम कर। कभी वक्त सी सवेरे उठते बच्चे मां बाप को नमस्कार करते, शामा सौन को पहला मां बाप दिन असीसा लग रही। सब कुछ साढ़े को खुश है, जे गुरमत नालो अपने कल्चर नालो अपने पिछोकड़ नालो उठ जाओगे, जिन्ना वाल वेख रहे हो इन्होंने को कुछ नहीं, और ही जिंदगी हो जाए। जो हो रही, मैं तो कई बार कहना के दौलत कमाने से आए तो आपने वो बच्चों की दौलत कमानी है, पर पढ़ो जिन्ना भी दौलत कमानी है जे वो ही साढ़े न रहे बोले। सानू दुखां से है कि असी पार्टियां के धड़िया में बैठ बैठ आए दिन कौम की दौलत ला रहे हैं, पर बिना सोचे समझे लगा रहे हैं। गुरुद्वारे तड़ा तड़ बन रहे हैं, वक्रे वक्रे हाल बन रहे हैं, पर जे असी अपना पिछोकड़ ना संभाल सकते, आने वाले 20 साल बाद इन गुरुद्वारे में बैठने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि अपना पिछोकड़ अपना कल्चर भी बच्चों को दो, ये जो उपराले नहीं हो रहे, कोई साधन नहीं ऐसे हो रहे। ऐसे बैठ के अभी जज्बाती गल करने उन्होंने करने जिन्होंने पता ही, इन बजुर्गों ने इन भैनों ने अपना कल्चर वेखे है, उन्होंने दसन का दोबारा लाभ नहीं। वो जज्बाती हो नाल सुनदिया ने सुनते ने भी असं भी हो जाने क्योंकि कुछ गुआ बैठे, पर यह सारिया गल् उन्होंने बच्चों समझाने की लड़ है जिहड़े बच्चे टुट रहे हैं और आने वाले समय में इस घाट में असी प्रतीत कर। जे असी गुरमत के अनुकूल अपने कल्चर के अनुकूल अपनी लाइफ ना आ रही तो केवल पछतावा पलने पाएगा, तो जे गुरमत के अनुकूल असी दृष्टि बन जाइए तो फिर सानू किसी होर धर्म की सानू किसी होर धर्म कर्म की किसी योग मत की किसी होर संन्यास के माला की लोड़ भी नहीं पाएगी जे सानू जीवन में गुरमत आ जाए। गुरु ने इस लिए बाणी आख्या कह लगे गुरमुख हसे गुरमुख रोवे जो गुरमुख करे साई पड़े। गुरमत के अधीन जीवन बिताने वाला मनुख का जोड़ा है उनका सारा कर्म ही भगती बन जाता है। जे मां बच्चे लिए कुर्बानी कर दी है तो वह भगती है, जे बच्चा मां बाप का सत्कार करता है तो वह भगती है, भगती तो वक्री नहीं। इसलिए असी इस भगती का दरवाजा
ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂੰਡ ਟੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮਹਿਨੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਛੁੜਾਂਗੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤੀ ਪਛਾਣ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਤ ਉਦਾਸੀ

गुरु के बचना द्वारा गुरु साहब कहंदे ने जन्म ते मरण दे दुख कटे गए। एक हुंदा है गुरु का शब्द, एक हुंदा है गुरु का बचन। गुरु का शब्द है जदो पांच प्यारे गुरु की हजूरी अंदर सिख नूं कहंदे ने बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, उस शब्द दिता जांदा है गुरु द्वारा, उन्हूं नाम दान कहंदे ने, शब्द दान किया गया। गुरु का बचन यह हुंदा है भी गुरु सिख नूं कहंदा है भी तू रोजमर्रा की जिंदगी विच इस तरह करना है, उन्हूं कहंदे गुरु का बचन। जिवें भूमिए चोर नूं गुरु साहिब ने तीन बचन दिते सन, झूठ नहीं बोलना, नमक खा के हराम नहीं करना और गरीब की इमदाद करनी है। ये बचन दिते उन्होंने, वो बचन है। जिहड़ा बचन है शब्द तो वखरा है। बचन दे अर्थ ने जीवन की साधना, शब्द दे अर्थ ने सिमरन। गुरु के बचना द्वारा संकट कटिया गया, जीवन दे विचों जिन्ने संकट सन दुख सन।